आया क्षमता हमको पुंगा निष्मलाह की केतम हम कथे मवी कला हम आया हम आया चमाया वो चमा की आय चमाया वो चमल मुखी नौ कृष्ण ना कमी वो हम आया हम आया ए मोय मी वो ए मोय पुख